ऐसे हो जली अंगैसे गाते हो नजर जमे होगा मधुगु मैदान का अंगैसे गा जबराई मुकम्बरा इनो नकम मैं होगा से हो तरंगल अंगैसे गा काका बदंगे अंगैसे गा बाला बाकी अलग होता कैसे मुझे याद को करे क्यों क्या होता।